Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Beta Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथियों, आपके पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रेम डॉक्टर विनेश और ये हमारा 703rd एपिसोड है ऑन प्लेन्स एंड मीडिया। और हमारे साथ आज दे रहे साहिल ऑन पेनलिंग प्लस जो शिवनील जी हमारे वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं। जो लोग हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन हो रहे हैं उसका भी शुक्रिया करेंगे। और जैसे हमने पहले फ्रिक्वेंसी पर बोल रहे थे कि हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं धीरू जी को और संजय जी को हमारे से स्टूडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड कीर्तन संध्या, ये जो पोस्टर आप देख रहे हो।

0: फेसबुक पे। तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे, पूरी जानकारी जो आपको देंगे काफी एक्साइटिंग है। ये रहेगा 18th of July, बहुत दिन नहीं बचा है, तो श्योर अगर आपका कैलेंडर फ्री है तो जरूर मार्क कर ले 18th of July, और समय है फ्रॉम 7 PM। तो इट्स अ गुड न्यूज है कि ये आ रहा है, और आई एम श्योर कि जो टीम है काफी जो मेहनत कर रहे हैं टिकट्स बेचने के लिए, सनातन सत्संग बॉयज है क्राइस्टचर्च, और कुछ टिकट हमारे पास भी है, तो अगर आपको लेना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हो, अदरवाइज जो भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो धीरू जी, आप बताइए कि आज आपका समय कैसे बीत रहा है?
1: ओ, समय तो बढ़िया है, अभी तो हमारे भी नाती भी आए घर पे, आज सैटरडे को तो दिन तो बहुत जिस तरह से कटता, अभी तो
0: बहुत बहुत पूरा पूरा फुल ऑन बिजी करके रखा हुआ,
1: फुल ऑन बिजी है। फिर तुम जानते हो घर से काम भी करते हैं, तो मैकेनिकल तो वो भी चलता रहता है, तो बिजी।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो धीरू जी एक क्वालिफाइड मैकेनिक है, जो मैकेनिकल काम वगैरह है, अगर आपको भी कुछ गाड़ी का कुछ इश्यूज है देन डू कॉन्टेक्ट धीरू, और घर से भी कर रहा है, तो विच इज गुड। और संजय आप बताइए कि आपका दिन कैसे चल रहा है? मुझे मालूम है आप काफी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो, और अभी आप फीफा का पूरा आपके पास नॉलेज है।
2: जी जरूर जरूर, सुबह जल्दी उठे, ओपनिंग सेरेमनी तो मिस कर दिया, थोड़ा गेम देखे, फिर आज सैटरडे है, शॉपिंग का दिन था तो हमने शॉपिंग किया, फिर घर वापस आकर वाइफ वो जॉब पे है तो कुकिंग वगैरह करे, थोड़ा काम किए घर के, फिर समय निकाल कर हम यहाँ आ गए।
0: जी हाँ बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि जो आपके बेटे आपको मदद करता होगा।
2: जरूर जरूर। आज सब्जी उन्हीं ने काटा है।
0: नो वरीज। तो चलो इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जो ये ग्रैंड कीर्तन संध्या अनुगमन क्राइस्टचर्च इस नथिंग न्यू टू, जब हम कीर्तन की बात करते हैं, जो काफी मंडलीज यहाँ पे है क्राइस्टचर्च में बहुत सालों से, और जो कीर्तन भजन सब चलते रहता है, कभी कभी कव्वाली वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, और त्रिकुट्टू वगैरह काफी प्रसिद्ध है क्राइस्टचर्च में, और This one is on 18th of July, तो आप बताइए धीरू जी कौन कौन कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं?
1: जी हाँ, यहाँ के तो एक हमारा खुद का अपना कलाकार है जो क्राइस्टचर्च का, जिसका पहला बार हम लोग एक बार और स्टेज दिए थे लास्ट ईयर, निमित, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हो गए, अभी अपना एक एल्बम भी निकाल दिया है, तो ये निमित है। और दूसरा रानी भी, जिसका पहला स्टेज हम ही लोग यहाँ पे क्राइस्ट में दिए थे, तो वो भी आ रही है, तो इस बार हम लोग ये सत्संग बॉयज उसको बैकिंग कर रहे हैं स्टेज पे, और निमित के बैकिंग के लिए ऑकलैंड से टीम आ रहे हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है जय भो बॉयज कि
0: निमित का लिखा हुआ है कि सपोर्टेड बाय भक्ति सत्संग बॉयज ऑकलैंड।
1: ये सब जानते होंगे दिव्यन कवाल जो उसी का ग्रुप है, वो भी शायद आएगा साथ में इसमें, तो वो भी उनके कोरस टीम में होगा साथ में।
0: ओके, और पोस्टर जब मैं देख रहा हूँ, इनका फोटो देख रहा हूँ, तो काफी यंग लग रहे हैं।
1: हाँ, बहुत बहुत कम है जो, तो निमित तो भी हम लोग सामने से
0: बजाना।
1: और इसमें बढ़िया बात एक और क्या है कि इसका भाई वो ढोल बजा रहा है, निखिल।
0: हाँ, हाँ। दो भाई थे, बहुत छोटे थे,
1: दोनों बहुत छोटे से,
0: बहुत छोटे से जो बजाना शुरू कर देते।
1: मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए, स्पेशली इन लोगों के जो आजा जी है, वो बहुत भारी टाइम निकालता है इन लोगों के वास्ते, तो वो मुझसे भी कभी बोलता है कि कुछ रे बैठा ऐसे देखते रहना कुछ काम, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यंग टैलेंट आगे निकले, तो इसीलिए तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, तो फिर क्राइसिस में कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ, तो ताकि उनका भी कुछ नाम चले ना।
0: जी हाँ सही बात है, और अगर धीरू जी की बात की है, जो अभी हमें सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जो फिजिकल जो क्राउड है यहाँ क्राइस्टचर्च में, तो दे आर ऑल अवेयर, बिकॉज हार्डली कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे धीरू नजर नहीं आएगा, विल बी देयर समहाउ, चाहे स्टेज पे होगा कहीं भी, वो सपोर्ट ऐसा दिखेगा, और कभी कभी वो स्टेज पे गाते भी हमें देखने को मिलेगा। सो थैंक यू धीरू फॉर डूइंग दैट, यू आर ऑलवेज देयर, डजंट मैटर कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, आप पहुँच जाते हो, विच इज ग्रेट, हमें ऐसे ही सहयोग की जरूरत पड़ती है। और जब बात करते हैं ये सब हमारा जो कीर्तन भजन होता है या जिस तरह हम रामायण पढ़ते हैं, ये सब हमारा अपना कल्चर है, जो बहुत अभी तो गर्मी डे भी आ रहा है, तो उस पर भी मैं बोलूँगा कि एवरी टाइम वी कीप ऑन सेइंग दिस, एंड द रीज़न फॉर सेइंग दैट इज़ बिकॉज ताकि हम बार बार आपको याद दिलाते रहे, बस ये हमारे जो पूर्वज थे, एंड फॉर देम इट वॉज़ वेरी प्रीशियस, उन्हें लाना बहुत कुछ था लेकिन वो सभी कुछ तो नहीं ला पाए, लिमिटेड था, इसे कम ही कम उसको लाना था, दे हैड टू चूज, बट उन्होंने चूज किया, जो रामायण बुक हुआ या ऐसा कीर्तन भजन वो सब बोला है फिजी में, और वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से जब हम चले, लाइक वी केम टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी गए, सो वी हैव केप्ट इट, और काफ़ी लोग हमें बोलते हैं, इवन हमारे बहुत दोस्त है साथी फ्रॉम इंडिया, दे ऑलवेज से कि ना तुम्हारा काफ़ी जो रामायण मंडली वगैरह हो रहा है, ज़्यादा करके

0: जो लोग इंडिया से भी जल्दी आए हुए हैं तो दे मिस इंडिया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मंदिर वगैरह जाते थे ना, तो यहाँ लोग पूछते कि मंदिर कहाँ है पे, और फिर बोलते हैं कि तो तुम्हारे जो फिजी मंडली से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अभी भी उस तरह जो रामायण वगैरह कायम रखे हुए. सो थैंक यू, हम आप लोगों को शुक्रिया करेंगे संजय और धीरू फॉर डूइंग दैट. और जैसे अभी आप बाद में अगर फेसबुक पर हम पोस्टर भी डालेंगे तो आप देखोगे कि जो ये जो कलाकार है दे आर वेरी यंग, देखने में यंग है, और निमित्त तो हमारा ही हम बच्चे कहेंगे, हमारे सामने वो लोग बड़े हुए हैं. दो भाई थे और बहुत प्रसिद्ध है, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के, दोनों भाई जब बजाते थे गाते थे. तो आज देखो बड़े हो गए. और धीरू यू मेंशन कि उसके एल्बम निकला, तो एल्बम क्या उसने यूट्यूब में डाला हुआ या?
1: हम सोचता कि सीडी भी है, यूट्यूब में भी है उसका. तो उसका अभी लास्ट ईयर तो जाकर के हम सोचता हुआ उसका बैकअप यही बॉयज लोग किए थे ऑकलैंड का.
0: No, we will try to find the link. हम पता लगाएंगे कि लिंक कहाँ पे, then we will try to put it on this video as well. उस पर हम नीचे कॉमेंट्स में डाल देंगे so that you can go and look at it. काफ़ी अच्छे. Anyway, we actually हम encourage करते हैं, हम चाहते हैं लोग थोड़ा सहयोग दें इस तरह के कलाकार के लिए, so that हमारे जो बच्चे generation है, जो अभी भी बच्चे होंगे and they are learning, या to encourage them because we need more and more of those. Because संजय हम आई थिंक हमारा तो कोई समय आएगा हम रिटायर तो होंगे ना किसी.
2: जरूर जरूर.
1: अभी एक शो और करके आए
0: फिजी में.
1: हाँ, जो खुद हमारा जो मंडली था वहाँ पे जसूरी में, नेताला से
0: जसूरी.
1: हाँ, तो उसका ये भी, ये लोग इसका नाना भी उन्हीं का.
0: काफी बड़ी बात है कि हम ज्यादा करके सुनते हैं कि फिजी से कलाकार यहाँ आते, फिजी से यहाँ आते थे ना, जब कोई आता है जो कीर्तन भजन या फिर आई थिंक द अदर थिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, होली में क्या प्रण गाते हो, अलग अलग जगह का जो अलग अलग स्टाइल ऑफ फाग होता है ना, वो लोग जब आते हैं तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है. देयर वाज़ इवन टाइम जब हम ओकलैंड से कलाकार आते थे, लेकिन नाउ हमारे कलाकार जाकर फिजी में अगर परफॉर्म करते तो बहुत बड़ी बात है.
1: अभी रानी भी तो फिजी के दौरा पे है, कुछ पूजा उन लोगों का, पूजा के बाद में कुछ कीर्तन भी है उसका, तो उसके बाद में वो आकर फिर यहाँ की तैयारी करेगी. तो अभी मैंने उससे लाइटली बात किया था, तो उसके पिताजी से, तो उसने कहा कि जब हम लोग ये पीजी से आ जाए तो फिर हम उसका तैयारी में लगे, क्योंकि हम लोग के भी इसके कोर्स के लिए.
0: ना, देट वॉज माई नेक्स्ट क्वेश्चन. वही मैं नेक्स्ट पूछने वाला था कि नॉर्मली जो जहाँ का होता है उन्हीं का ग्रुप उनका जो बैकअप करेगा ना, बिकॉज साथ साथ में प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा. बट यहाँ पे क्रॉस से यानी कि अमित सॉरी निमित का जो बैकअप ओकलैंड वाला जो सत्संग बॉयज कर रहा है, और रानी जो एक्चुअली ओकलैंड की है उसका बैकअप आप लोग कर रहे हो, तो कैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे?
1: देखो क्या है कि हम लोग के पास बोझ, इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये जानना है कि वो क्या गाएगा. तो और फिर जैसे जो स्वर होता है, राग होता है, कैसे मिलाना है, कैसे वॉइस मैच करना है, वो सब हम लोग ट्रेनिंग में कर लेते हैं. तो इसके लिए बहुत कड़ा नहीं होता है, तो एक ट्रेनिंग हम लोग के लिए काफी होता है. और फिर नॉर्मली जैसे ये पहली बार नहीं है हम लोग, जैसे ये लगभग थर्ड होगा जो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन ट्रेन करके नेक्स्ट डे हम लोग स्टेज उतरते हैं.
0: ठीक है, और वैसे भी और भी सवाल है पूछने के लिए, बट आई विल मूव टू संजय. तो संजय आप बताइए कि ये जो टिकट प्राइस क्या है?
2: टिकट का प्राइस $15 है, उसमें खाना इंक्लूडेड है, डिनर प्रोवाइडेड, और हमने डोर ड्रॉ भी रखा है, 5 प्राइस है. तो ये प्राइस सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उस दिन अटेंड करेंगे.
0: रिटर्न फ्लाइट टू फिजी,
2: रिटर्न
1: फ्लाइट.
2: ये रखने के लिए महत्व ये है कि आप लोग पधारे और आकर हमारा शो देखे और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाए और हमारे धर्म के कार्यक्रम में आगे बढ़े.
0: जी, और ये जो $15 आप बोल रहे हो जो टिकट है लोग पे करेंगे, I'm guessing it's pay person, और is there any limit like बच्चों का?
1: Under 12
0: free रहेगा. जी हाँ, तो अगर आपको $15 पे करना है यू कैन कम, और under 12 फ्री रहेगा. और जो $15 जब लोग पे करते हैं तो उसमें आपने भोजन आई थिंक मेंशन किया ना?
2: जी जरूर.
0: तो साथ में
2: डिनर प्रोवाइडेड है.
0: जी,
2: आप आए, मनोरंजन उठाए, काफी अच्छा भोजन होगा.
0: जी हाँ, बिकॉज आई थिंक पहले समय था कि आई थिंक कुछ $11-12 में आपको भोजन मिल जाता था, बट आई थिंक अभी अगर आप भोजन अगर देखोगे तो आई थिंक
2: खर्च बढ़ गई है, इसलिए हमको थोड़ा प्राइस ऊपर करना पड़ रहा है.
0: तो आई थिंक $15 इन अ वे अगर आपको भोजन साथ में दे रहे हो देन इट्स काइंड ऑफ रीजनेबल या चीप भी बोल सकते हो.
1: अभी
0: सभी नहीं मिलता ना.
1: अभी एक चीज पे हम लोग और उस पर थोड़ा बात कर रहे हैं कि जैसे अभी फ्यूल प्राइस बहुत महंगा है, तो जैसे अगर शायद एस बेटन से उधर से कोई आया डाउन साउथ से, तो शायद हम लोग फ्री एंट्री रखेंगे.
0: ओके,
1: उनके होम स्टे आकर किंचन सुने, वो लोग ऑलरेडी उतना खर्चा करके आएंगे।

0: फ्यूल लगता है
1: हाँ,
0: जी।
1: तो हम लोग वो अभी बात कर रहे हैं तो, और इसमें सिर्फ हम लोग के ऊपर है, यहाँ हम लोग यहाँ कितना टिकट बेच ले तो उन लोगों को उतना फ्री कर सकते हैं हम लोग।
0: एग्जैक्टली, तो आई थिंक द अदर थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट, काफी लोग देख रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा चीज़ है, और काफी लोग है लाइक हु एक्चुअली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स, बिकॉज काफी लोग है जो धर्म से काफी जुड़े हुए एंड वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये धर्म आगे बढ़े, लेकिन ऑब्वियसली अब सभी लोग के ओ नहीं होता है कि एवरीबॉडी हैज दैट टाइम टू डू इट। आप लोग कर रहे हो तो समटाइम्स दे वांट टू सपोर्ट इन इन सम वे, चाहे पैसे दे के जो कुछ भी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट या जैसे भी, अगर सपोर्ट बन सके अगर दे सके तो। संजय जी बताइए किसको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कांटेक्ट करना है।
2: जी हाँ, प्रेसिडेंट धीरेन कुमार धीरू जो हमारे साथ बैठे हैं उनके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका फोन नंबर है 0210537361, और हमारे ट्रेजरर साहब है बिमलेश शर्मा, उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0223789309, और सेक्रेटरी साहब है रवि कुमार, आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं 0221532244। इसके अलावा दुकान में पोस्टर भी लगा है तो आप वहाँ पे भी, ग्रोसरी शॉप जो इंडियन शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी पोस्टर लगा, उस काउंटर पर जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको टिकट मिल सकता है।
0: जी हाँ, तो आप अगर टिकट लेना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दोस शॉप्स, या तो फिर जैसे हाँ ये पोस्टर हम डाल देंगे फेसबुक में, सो दैट इज ईजी, आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम, या फिर हमें भी आप संपर्क कर सकते हो। हमारे पास अभी भी हाथ में जो टिकट रखा हुआ, अगर आपको चाहिए देन यू कैन ग्रेब दोस टिकट्स, अदरवाइज डो पे तो हर वक्त रहता है ये टिकट्स, अगर आप
2: नहीं बाय कर मिला
0: तो जरूर मिलेगा, बट अगर आप पहले से ले लोगे तो जैसे धीरू जी बोल रहे हैं कि उसको आंकड़ा मिल जाता है एंड देट वाई ही कैन वेक आउट की जो ये लोग दूर से आते रहे, फॉर एग्जाम्पल बेटन आई नो देयर मेनी जो मंडी उमरू तक है, कभी कभी प्रोग्राम होता है लोग उमरू से भी आते हैं, सो इफ दे वांट टू कम एंड ट्रैवल देन आई डू एग्री विद धीरू, और हम कहेंगे काफी अच्छी बात कि आप लोग कंसीडर कर रहे हो कि उन लोगों को फ्री एंट्री मिल जाए, बट इट कैन ओनली हैपन इफ इट कैन बी सब्सिडाइज्ड, और ये हो सकता है कि अगर यहाँ के जो लोकल्स इफ दे कैन कंट्रीब्यूट बाय टिकट्स, या तो फिर अगर आपको अगर डोनेशंस वगैरह देना है जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग टू अ गुड सॉन्ग गुड कोर्स, और ऑलरेडी जो ग्रुप एस्टेब्लिश्ड है सत्संग सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्ट चर्च, तो डोनेशन आप दे सकते हो ताकि इन मनी विल ऑब्वियसली गो टुवर्ड्स दिस इवेंट, और मे बी जो फ्यूचर इवेंट भी होते रहता है, आई नो दिस ग्रुप इज क्वाइट एक्टिव, आप लोग काफी जो कार्य करते रहते हो एंड सो दैट इट कैन गो टुवर्ड्स देयर, तो अगर आपको ऐसा कुछ है देन डू कॉन्टेक्ट अस फील फ्री ताकि हम इस विषय में बात कर सकें। और चलो संजय जी बताना है कि हमें कहाँ पे आना है।
2: हमको टेम्पलटन हॉल पे आना है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, शाम को 7 बजे शुरू होगा, आप समय से आ जाइए, आपको पता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आप समय से आएंगे तो ज़्यादा गीत सुनने को मिलेगा, तो इसलिए आप समय पे आ जाइए।
0: आई थिंक क्रशेश या तो फिर न्यूजीलैंड का हम जनरली यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम का क्या हो जाता है कि अगर देर से स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हो, लेकिन आप देर से खत्म नहीं कर पाओगे, आपको टाइम पे ही खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू क्लियर द होल, और समय पे होल पे देना पड़ता है, अगर आप टाइम पे होल क्लियर नहीं करोगे नहीं सौंपोगे देन दे एक्चुअली चार्ज पेनल्टी, तो काफी टूटा हो जाता है, तो इसीलिए इफ यू कैन सपोर्ट बाय कमिंग ऑन टाइम, ताकि जो जो लोग इस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स कैन स्टार्ट ऑन टाइम, ताकि एज संजय बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ कीर्तन लोग ज्यादा गा सके, या तो फिर जो प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग किया है ना सभी आपको लोग सुना सके। तो अब ना हम चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है धीरू जी, इसमें कावा क्या क्या
1: ऑर्गेनाइज किया है? कावा हम लोग शायद सेल्स करेंगे, बट डिपेंड्स, अभी देखो जैसे मैंने इसमें बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की सब कुछ, मैंने बहुत स्पॉन्सर खोजने की कोशिश किया, तो मैंने मुझको कुछ स्पॉन्सर से मिला, तब मैंने कुछ प्राइस लिमिट किया, अगर हमारा और जिससे कुछ और डोनेशन हो गया और टिकट अच्छा सेल्स हुआ तो शायद काबा भी फ्री कर देंगे, तो ये सब डिपेंड्स ना।
0: सही बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मनी दैट कम्स इन, बिकॉज जो बजटिंग होता है हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज आई डू काइंड ऑफ इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स एज़ वेल, तो मुझे मालूम है कि अभी कॉस्ट बढ़ चुका है, एवरीथिंग कॉस्ट, इवन खाने का अगर बात करोगे कोई बना रहा जाए पुलाव बनाओगे जो भी बनाओगे, बट सामग्री बाय द टाइम आप बाय करते हो तो काफी हो जाता है, तो इट्स नॉट नो चीप दिस डेज,
1: और फिर कावा भी वैसे भी अभी 170 लाख केजी है,
2: जानते हैं। चलो एक बात और मैं बोल देता हूँ, ये फंड रेजिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने फॉर्म किया, क्राइसिस में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होता है।

0: मरनी हो गया, रामायण हो गया, या कोई कार्यक्रम हो गया तो हमको कॉल करते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो हम उनके घर पर जाकर कीर्तन वगैरह रामायण वगैरह में सपोर्ट करते हैं। तो हम उनसे कोई
1: पैसा नहीं।
0: चार्ज या पैसा नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमको रन करने के लिए, हमारा संस्था के लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, कुछ हमारे पास कुछ फंड आ जाए और इसके बदले में हम आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा वही है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम को रच रहे हैं और आशा करते हैं वाइडा क्राइस्टचर्च आकर हमको सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो यही मेरा हमारा उद्देश्य है।
2: जी हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपने सुना है फ्रॉम संजय धीरू, इफ़ यू कुड सपोर्ट दिस गुड कॉज और हमारे धर्म के लिए है तो दैट्स अ वन वे ओ द अदर, जिसे हमारे धर्म कहता है कि यू कैन सपोर्ट, अपना जो योगदान दे सकते हो वन वे ओ द अदर, काफ़ी वाइज है। तो डू कॉन्टेक्ट देम अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हो या थॉट्स हो, या तो फिर आप डोनेशन देना चाहते हो, सो दैट इट इज़ अ सक्सेस। और जैसे हमारे वक्त कहते हैं कि ये एंड नहीं होता है और ऑब्वियसली बिगिनिंग भी नहीं है, बट इट विल कीप ऑन गोइंग। बट आपका जितना सपोर्ट है तो उसी पे आधार होता है कि आगे क्या होता है। और धीरू जी आप बताइए कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो कीर्तन भजन या कुछ होता है उसका कोई थीम कुछ होता है, इसमें कुछ थीम वगैरह किसी थीम पे लोग गाएंगे
1: ना? ना,
2: जनरली
1: जनरली होगा। हाँ
2: जी हाँ, तो सभी तरह के कीर्तन होगा।
1: हाँ, जैसे नॉर्मली शुरू होता है ना,
2: हाँ, गणेश
1: जी का करते हैं, सरस्वती का, फिर हनुमान जी का, ऐसे तो इसी तरह से बस चलेगा सब कीर्तन।
2: जी हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे हमने सुना कि जो निमित सिंह है, तो हमारा जो यहाँ का जो बच्चा है फ्रॉम क्राइस्टचर्च, और साथ साथ में जो रानी मुदलियार जी है जो इश इज़ फ्रॉम ऑकलैंड, और अभी जैसे धीरू ने बोला है इश इज़ ऑन फिजी टूर, तो ये होगा। और द डेट इज 18 जुलाई, आई थिंक सैटरडे पड़ता होगा ना?
1: सैटरडे।
2: जी हाँ, तो इट्स सैटरडे इवनिंग 7 PM टेम्पलटन हॉल, जो 64K crowd है। और इफ़ यू कुड कम ऑन टाइम, बिकॉज कभी कभी ट्रैफिक, अभी तो ट्रैफिक भी बढ़ रहा है।
1: हाँ, इसमें एक बात और बोल दे विनेश जी, हम लोग जैसे अभी जैसे जो साउंड सिस्टम हम लोग का है, तो साउंड सिस्टम कैन एमएजेस कर रहे हैं, और जो साउंड कंट्रोल करेगा वो डीजे मैक्स, वो ऑकलैंड से आ रहा है। तो क्योंकि मैं जहाँ पे अभी एक लेटली एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने देखा था, तो इन लोग का साउंड सिस्टम से रखना दूसरा सिस्टम से होता है ना, क्योंकि बहुत जगह होता है बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट कर देते हैं, दो स्पीकर रखे तो ये लोग क्या करते हैं, 3-4 स्पीकर लाइन से रख देते हैं, तो नॉर्मल साउंड तुम ऐसे सुनेगा कि
2: सराउंड होता है। थैंक यू सो मच, बिकॉज एक्चुअली मेरा जो ईयर सेंसिटिव है, ऐसा इनको पता है कि उतना लाउड में फिर मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ, बिकॉज मैं बहुत नहीं स्टैंड कर पाता हूँ। मैं नहीं बोलता कि कोई बुरा गा रहा है कुछ, बट यही कि हमारा जो ईयर ड्रम सभी का अलग अलग होता है, तो मेरा थोड़ा सेंसिटिव पड़ता है जब साउंड्स की बात आती है, तो मुझे वो मीडियम ही चलता है, बहुत ज्यादा होता है तो तकलीफ होती है। एक समय था जब ना नाइट क्लब्स वगैरह तो चल जाता था, लेकिन अभी अभी नहीं, अभी तो अफेक्ट हो रहा है सब। तो बट इट्स गुड कि आप लोग ये सब कर रहे हो। और चलो, हमारे पास थोड़ा कुछ समय बचा है अकॉर्डिंग टू साहिल, बिकॉज हमारे पास जैसे हमने बोला था एक इंटरव्यू हमने किया था डोमिनिक यांसिक, जो लेबा कैंडिडेट है, जो विग्रम जहाँ पे मेगन वुड्स अभी तक जो इलेक्शन के जो एमपी है, तो उसकी जगह अब ये खड़ा रहेगा आपके इलेक्शन में, क्योंकि अब एमपी जो मेगन वुड्स है, शी इज नॉट गोइंग टू स्टैंड फेदर इन द इलेक्शन, तो वो हम आपको सुनाएंगे। और जाते जाते द अदर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज, आपके जो स्पॉन्सर्स है उनको आप याद करना चाहोगे?
1: जी हाँ, स्पॉन्सर्स, हाँ, ये लोग तो मेन होते हैं हमारे लिए।
2: हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं धीरू ऑटोमोटिव्स।
1: जी, हमारा तो सभी जगह रहता है, तो मनीष ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ये है, और फिर यूनिक मोटर्स है, सैंडल पैनल एंड पेंट, धीरू ऑटोमोटिव, और हमारे शायद तुम जानते हो रिचर्ड सेवक।
2: हाँ, रिचर्ड सेवक, लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के जो रिचर्ड सेवक है जी,
1: ये उसका है। और अभी हमारे एक नए पैनल बीटा, अभी नए पैनल बीटा पुराने
2: पुराने
1: नए बिजनेस खोले अपना कमलेश प्रसाद जी, तो उसने भी कुछ हम लोग का सहयोग किया इसमें। और फिर एक अकाउंटेंट है शायद लोग जानने सरनस
2: शरणा,
1: तो वो भी हम लोग के वो अकाउंटिंग करता है, तो वो भी स्पॉन्सर किया। और एक हम लोग के इंडिविजुअल पेशन, और उसने खुद अपने आप बढ़ा हमारे पास, कि जब उसने देखा कि हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि

0: नहीं हम भी इसमें मदद करें
1: जी.
0: तो उसने भी हमको डोनेट करने की प्रॉमिस की. और फिर सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी रूप प्रकाश जी बहुत हम लोग के हेल्प करते सभी समय, हमारे ग्रुप में भी है, तो वो भोजन दे रहे हैं और फिर दे नहीं रहे बना भी रहे हैं साथ में. तो
1: जी हाँ, और शांडिल्स पेनलबिटस,
0: हाँ
1: शांडिल जी भी है जी हाँ, जो शांडिल भी काफ़ी जो प्रसिद्ध है क्रशिश में. तो चलो, हमारा समय तो ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें यहीं फिनिश करना पड़ा है. तो वंस अगेन, दिस इज़ द टिकट्स, अगर आपको टिकट चाहिए यू कैन बाय टिकट्स. हम बच्चे जो इन्फॉर्मेशन अपने फेसबुक पे डाल देंगे. एंड थैंक यू धीरू जी और संजय जी दोनों जन को आने के लिए हमारे प्रोग्राम में और बताने के लिए कि मो अबाउट दिस जो अभी आपका इवेंट हो रहा है. और हम चाहेंगे जो लोग हमें अभी फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फिर जो फ्रिक्वेंसी पे भी सुन रहे हैं, आगे चल के सुनेंगे भी, इफ यू वांट टू सपोर्ट इन एनी वे, डोनेशन वगैरह से इंडिविजुअल भी आपको देना है या तो गुप्त दान भी करना है, देन डू कॉन्टेक्ट दिस ऑर्गेनाइजर्स.
0: सही बात किया कि अभी गुप्त दान हम लोग को कुछ मिला हुआ है तो उन लोगों ने कहा कि नाम नहीं बना, तो हम लोग अच्छा डोनर दिए तो उसने कहा कि हमारा नाम नहीं बना तो
1: जी हाँ. तो अगर आपको ऐसा भी कुछ करना है तो कीजिए, बिकॉज वंस अगेन ये जो हमारे धर्म की बात आती है और अभी जो स्थिति चल रही है, जो भी चल रहा है, तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ताकि हम अपना जो धर्म बचाए रहे और हमारा जो सनातन का जो झंडी हर वक्त लहराते रहे. तो इसके आपके हाथ पे, हमारे जो यहाँ पे धीरू जी संजय उसका जो पूरे जो टीम है, सत्संग बॉयज है, हम सबको शुक्रिया करना चाहेंगे कि दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब. एंड ऑफकोर्स जो पंडित जी जो हमेशा खड़े रहते हैं पीछे आपके, तो थैंक यू सो मच. तो हम यहीं पर अपना जो लाइफ एंड करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे फ्रीक्वेंसी पे आप सुनते रहिए क्योंकि इसके बाद में आपको जो हम इंटरव्यू सुनाने वाले हैं. सो शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच.